0: चाड़ पर्व में यूरोपेन्स प्रस्तुत करद रंगीन घर बरसिं उपहार रु 50,000 को यूरोपेन्स को खरीद में पाने लकी ड्र कूपन अवन इन्वर्टर एसी एक टन डबल डोर फ्रिज इंडक्शन चूलो राइस कुकर वॉल क्लॉक बम्पर प्राइस में पाने एक जोड़ी को लगी बाली टूर यूरोपेन्स घर मात्र रंगाउन सपना बने
1: महालेखा परीक्षक को कार्यालय को अनुरोध महालेखा परीक्षक को कार्यालय को स्वीकृत लेखा परीक्षण नीति तथा कार्यतालिका अनुसार आर्थिक वर्ष 2082-83 को आर्थिक कारोबार को लेखा परीक्षण गर्न प्रथम चरण में 44 जिल्ला का संघ प्रदेश र स्थानीय तह का कार्यालय लेखा परीक्षण टोली खटाइएको छ। लेखा परीक्षण में सघाउ पुग्ने आर्थिक काम कार्यवाही को सूचना तथा जानकारी एवं लेखा परीक्षण टोली को कार्य सम्पादन का सन्दर्भ में कुनै सुझाव तथा गुनासो भएमा कार्यालय को टोल फ्री नम्बर 18-1050-0061 मा रेकर्ड गराउनु हुन वा gunaso@oagnep.gov.np मा इमेल गरिदिनु हुन अनुरोध छ। प्रथम चरणमा लेखा परीक्षण हुने जिल्लाको विवरण कार्यालयको वेबसाइट oag.gov.np मा प्रकाशन गरिएको छ।

0: रेडियो थाहा संचार 99.4 निष्पक्ष सक्रियताको अभ्यास।
1: तुमसा कोई दूसरा इस समय पे हुआ तो रब से शिकायत होगी, तुम्हारी तरफ रुख किसी गैर का हुआ तो कयामत से पहले कयामत होगी।

0: नेपाली रेडियो नेटवर्क रेडियो एनआरएन 99.1 मा यो हो फिल्मी मेलोडी।
1: Dryness or sensitivity, try Pond's Hydro Miracle Face Wash. Cleanses gently for hydrated smooth skin.

0: ए नानी हो, कता जानी हो?
1: अनि देखेन र डोको नाम्रो बोकेर घाँस काट्न जान लाग्यो?
0: ए हो त नि गाँटे ममोरनी त्यति।